0: You are listening to WOBC FM 91.5 Oberlin College and Community Radio. Here we go.
1: बाल गणेश में हमारे प्यारे मूषक राज गणेश जी के लिए अपने साथियों के साथ क्या धमाल नाचे थे, वैसे ही कुछ रॉक एंड रोल हो जाए।
2: ओके, बोलो गणेश जी की जय।